0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, वक्त हो चुका है, 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरी सटून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, कार्यक्रम की पहली फरमाइश लेके आ रही हूँ सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है बेबक मीना जी ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश, पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

के बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते मैम।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: नाम है मंजूर अली खान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगा पे बैठे हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैं गाना सुनना चाहता हूँ इन आशीर्वादियों।
1: इन आशीर्वादियों। ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम
0: जी। नाम क्या है आपका?
1: जी शहनाज।
0: शहनाज जी कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रंजय कॉलोनी गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जन्म जन्म जो साथ निभाए तुम ऐसा बंधन बन जाओ।
0: ओके मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग मैम, नाम क्या है आपका?
1: सवाई माधोपुर से मोनिका
0: जी। मैम कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: गीला मौत से नहीं है।
0: क्या मैम?
1: गीला मौत से नहीं है।
0: गीला मौत से नहीं है।
1: हाँ
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो दीदी नमस्कार
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: अभी दीदी यहाँ पे जबरदस्त बारिश हो रही है।
1: हाँ जी।
0: और उधर राजस्थान का मौसम कैसा है दीदी?
1: सर है अभी तो मौसम,
0: यहाँ भी सुबह से तो थोड़े से बादल थे, एकदम धूप निकली, अब बारिश होने लगे। चलिए तो बरसा बरसा घटाओं से पानी, ये वाला सुनवा दीजिए।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडी डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत

0: 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: चौधरी, नाम है माधुरी जी से बोल रहा हूँ।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना है, मैं हूँ छोरी मालन की।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: संजय कॉलोनी गंगापुर सिटी और तुम ऐसा बंधन
1: पिक्चर का गाना है भगवान है कहाँ रे तू।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: ओके मैम, थैंक यू।

0: हेलो।
1: आदरणीय दीदी सर नमस्कार।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: मैं मथुरा से ब्रज रेडियो का मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति से राधा सिटी से। गुड मॉर्निंग राधे राधे।
0: गुड मॉर्निंग राधे राधे।
1: दीदी आप कैसी हैं?
0: सर ठीक है, और आप कैसे हो?
1: मैं भी अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद है बाकी बिहारी कृपा से। सब लोग घर परिवार में आनंद से हैं, और मैं डीएस सुनता रहता हूँ, आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ, अच्छा लगता है।
0: धन्यवाद सर। बताइए सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: थोड़ी सी मुझे जानकारी दे दीजिए कि शाम को 4:30 बजे जो हेलो फरमाइश आता है वो उसकी रिकॉर्डिंग कब की जाती है?
0: सर 3:30 बजे हमारी कॉलिंग लाइन चालू हो जाती है। 4 बजे तक हमारी कॉलिंग लाइन चालू हो जाने के बाद उसको बंद कर देते हैं 4 बजे, फिर उसके बाद हम 4:30 बजे हेलो फरमाइश चालू कर देते हैं प्रोग्राम।
1: ओके थैंक यू दीदी फॉर इन्फॉर्मेशन।
0: हाँ सर,
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है भूल भुलैया।
0: अच्छा सर।
1: तेरी आंखों की भूल भुलैया, तेरी बातों की भूल भुलैया, टाइटल सॉन्ग सुनना चाहता हूँ।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
1: सर नाम क्या है आपका?
2: अरमान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: नसिया कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कि मैं सर को कौन सा गाना
2: बता। कोई सा भी चलेगा।
1: ओके सर।

0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: जी मैं कौन से
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: जी गंगापुर राजस्थान से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना सुनना चाहते हैं, हमारे एक दोस्त की फरमाइश है। तो वो गाने का नाम है काला शाह काला।
0: काला शाह काला, ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम,
0: वेलकम सर।

0: नमस्कार जी मैडम, नमस्ते
1: सर। नाम क्या है आपका?
0: रतन लाल बोल रहा हूँ, महू कला से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सुना दो मैडम। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया
1: करार। सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

DS साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी।

0: 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेरा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: मैं टोंक से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: मैं सुनना चाहूँगा पेरेंट्स सॉन्ग।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से सुहानी सुबह में प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैम। जिला बाड़मेर राजस्थान।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज जो गीत सुना पिक्चर का नाम है हनीमून और गीत के बोल है तू नींदों की रानी में प्यार का सपना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

वक्त हो चुका है 11:07 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस और आपने मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस बार में आपकी रेडियो दोस्त आरजे।

0: जी।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: नाम कृष्णा मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तो सर का नाम है अनीता और गाने की बोल है कैसे करूं प्रेम की मैं बात।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: यू वेलकम सर।

0: मेरा चोरी मेरा घूंघटा उतार दे। काहे जोरा जोरी मेरा।
1: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: पलक।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: कॉलेज वाली चोरी।
1: ओके सर, ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नाम क्या है आपका?
1: गुलशन।
0: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तो अभी तेरा नाम हसीना सुबह।
0: ओके मैम सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिए
2: जी। साजा छोरा तो घना एंडी है।

0: हेलो हाँ जी, क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तुझे भूल जाऊंगा तो और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हाँ जी, योगेश जांगड़े बे में तरह छत्तीसगढ़ से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: क्या कहना है मूवी का टाइटल? सर
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हाँ जी नमस्कार
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: निजात खान पुराने नाम।
1: कहाँ से बात सर? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हाँ जी मेरे साथी का।
1: ओके सर,
0: मोहम्मद रफी की आवाज़।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आकाश।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: नसीहा कॉलोनी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दीवाने एक दीवाने।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: दीदी नमस्कार।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: जी खान निवेदन कर रहा हूँ। जी
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हमसे काबूल हुई जो ये सजा हमको।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कौन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम।
0: हेलो

0: जैसे सच बोलने वाला।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मनीता।
2: बाहर से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलोनी।
2: हम कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: दिखे तुमसे कोई जादूगरी।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: प्रिंस।
1: कहाँ से बात कर रहे हो प्रिंस जी?
0: गंगा प्रसिद्ध है।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: लघु गीत सुना करिए।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। हेलो,

0: हेलो हेलो, हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: सर मैं की ड्रेस मन, हाँ बोल।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: ये नहीं तो तुम्हें कम पसंद करते।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: लतीफ अहमद रेन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैं कश्मीर से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बरसात नहीं, बरसात है ना?
1: हाँ सर।
0: इसमें सुनाइए कोई भी।
1: बरसात से?
0: हाँ
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: वैष्णवी शर्मा।
2: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? गंगापुर सिटी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बेरड़।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तेरा लक दाहू लहरा रंग रारा जी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमा।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: निकिता।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: रेलवे स्टेशन।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तेरे इश्क की दीवानी।
1: वो क्यों सुना रहे हैं आपकी फरमाइश?

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम क्या है आपका?
1: रफीक खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: लोगों मस्जिद के पीछे।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दिल परदेसी हो गया।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी बदमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गौतम मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सेवा।
1: कहाँ से सर?
0: सेवा।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: कान में निराश हूँ गोली चलाया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: ओके मैम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आलोक शर्मा।
0: आलोक जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जितनी दफा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: राजकुमार मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: फवारा चौक।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: सुनंदा शर्मा का तुझे प्यार होया।
1: किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: गौरव।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? सैनी नगर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: डेड ब्लैक।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: विनोद कुमार सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी माउकला।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मैडम गाने का बोल है ओ माही वे और फिल्म का नाम है क्या यही प्यार है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू मैम।
1: कहाँ से बात?
2: वही तो है असली मालिक।
3: आई एम सॉरी सर, मुझे लगा यही मालिक है।
4: और आप? मैं तो डीलर हूँ जी। लव, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं।
2: सर
5: नमस्ते सर, ये जमीन के मालिक और ये कंपनी के MD।
4: कर लो जी आपस में बात। ये लो चेक, आज से जमीन हमारी।
6: केडी, ये धरती मेरी माँ है, इसने जन्म दिया मारते।
7: बस बस बस बस बस बात सुन भाई, यह धरती है मारी और हम को नहीं बेच दे।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी सोनू तमोली।
1: हेलो
0: जी मैडम, सोनू तमोली।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: नागपुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपको, सरमाइज करिएगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: पिया जावर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: नैरो।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: वेरी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:31 का। तो सुगंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद 1 बजे नहीं तराने कार्यक्रमों के साथ 89.6 रेडियो डीएस पर।

पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

और दोस्तों वक्त हो चुका है 1:08 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नहीं तरानों के बीचों में बातें करते हैं। गर्मियों के मौसम में हमें बढ़ रहे बुजुर्ग बच्चों का ध्यान कैसे

26 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाता है और नमी भी ज्यादा होती है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और जिल्द के मसाइल आम हो जाते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बुजुर्ग लोग, बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए। इनके लिए ये वक्त सबसे खतरनाक होता है। एक बॉस पानी और सियाल पीना हाइड्रेशन, दिन भर में कम से कम 2 से 4 लीटर पानी पीएं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुनासिब मकदार। सादा पानी के साथ नींबू पानी, लस्सी, छाछ, नारियल पानी और सिज़ी के फलों का जूस पी लें। चाय, कॉफी और शरबत कम करें। अल्कोहल बिल्कुल ना लें। पेशाब का रंग हल्का जर्द होना चाहिए। गहरा होने का मतलब है पानी की कमी। 2. बाहर निकलने का वक्त और एहतियात। दोपहर 12 से 4 बजे तक गैर जरूरी बाहर ना जाएं, खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों, हामला खवातीन और दिल ब्लड प्रेशर के मरीजों को। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो छतरी, टोपी, धूप का चश्मा और हल्के रंग के कपड़े इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन SPF 30+ लगाएं। हल्के सूती ढीले कपड़े पहनें। गहरे रंगों से गुरेज। 3. घर को ठंडा रखें। दिन में पर्दे बंद रखें, रात को खोलें। पंखे, कूलर या AC का इस्तेमाल करें। गर्मी के वक्त खाना पकाने से गुरेज करें या जल्दी सुबह शाम पकाएं। गीले तौलिए या ठंडे पानी से नहाएं। 4. खुराक डाइट। हल्का खाना खाएं। तरबूज, खरबूजा, आम, खीरा, दही वगैरह ज्यादा खाएं। तला हुआ मसालादार और भारी खाना कम करें। नमक की कमी ना होने दें। गर्मी में पसीना ज्यादा निकलता है। थोड़ा सा नमक वाला नींबू पानी मुफीद है। गर्मियों में 5 बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास एहतियात। बच्चों को बाहर खेलने के लिए सुबह सवेरे या शाम का वक्त मुंतखब करें। इन्हें कभी भी बंद गाड़ी में अकेले ना छोड़ें। बुजुर्गों को बाकायदगी से पानी याद दिलाएं। वो अक्सर प्यास महसूस नहीं करते। इनकी दवाएं गर्मी से मुतासिर हो सकती हैं। डॉक्टर से मशवरा करें। दोनों को ज्यादा जिस्मानी सरगर्मी से रोकें। 6. वर्जिश और रोजमर्रा मामूल। वर्जिश सुबह 7 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद करें। अगर बाहर काम करना पड़े तो 15-20 मिनट बाद आराम करें और पानी पिएं। खतरनाक अलामात, फौरी डॉक्टर से रुजू करें। शदीद थकावट, चक्कर आना, मतली, उल्टी, जिस्म का दर्ज हरारत बहुत बढ़ जाना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बस, पसीना ना आना हीट स्ट्रोक की अलामत, उलझन या बेहोशी। मुंबई के लिहाज से यहाँ गर्मी के साथ नमी ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, जो पसीना खुश्क होने नहीं देती, इसलिए डिहाइड्रेशन का खतरा और बढ़ जाता है। अगर आप सेहतमंद हैं तो एहतियात से गर्मियाँ आसानी से गुजर जाएंगी। अपने घर वालों को भी ये बातें याद दिलाते रहें। गर्मी से बचें, सेहतमंद रहें। अगर आप कोई मखसूस मसला जैसे बच्चों की देखभाल।

0: सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उसे मायके गए हुए।
1: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है, 2 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नए तराने। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम भूली बिसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 2:21 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो DS पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:56 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन नंबर है 6378024475। पुण्य प्रयास करें 6378024475 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: क्या सर?
1: कभी हाँ कभी ना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश कर लेते हैं। हाँ जी, नाम क्या है आपका?

0: के हम 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9888।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: मनीष।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: सैनिक कॉलोनी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके सर, सुना रहे हैं आप।
4: लेट्स डांस। नो, यू डांस विद योर हबी ना, आई एम स्टेइंग हियर।

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
3: डीएस साइंस एकेडमी जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मोनिका
1: जी, कहाँ से बात कर रहे?
0: रेलवे कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये जो सिल्ली सिल्ली आंधी है हवा, कितने कोई रोंदा होगा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना लुट पुटे गया फ्रॉम द फिल्म डंकी। और एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ कि चांद आपने देखा है, चांद गोल होता है, लेकिन फैक्ट यही है कि चांद और धरती का रोटेशन इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है कि बचपन से अभी तक हम चांद का हमने सिर्फ एक ही चेहरा देखा है, यानी सिर्फ एक ही साइड हमने चांद का अभी तक देखा है अपने आंखों से, दूसरे साइड हमने कभी नहीं देखा। आप सैड मत हो, अगर आपको एक से ज्यादा चेहरे देख रहे हैं तो फिर अपने एक्स का देख लो। मूड खराब नहीं करूंगा। चलो बैक टू बैक आपके लिए अमेजिंग गाने प्ले करने वाला हूँ। कितने गाने? 4। ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस।
1: गंगापुर स्थिति की धरती पर रेडियो डीएस।

0: फॉगी फॉगी मौसम है भैया, धुंध ही धुंध है, ओसी ओसी। और इस वक्त गंगापुर सिटी में मैं अगर तापमान की बात, वेदर की बात, टेम्परेचर की बात ना ही करूं तो बेहतर है, तो किसकी बात करूं? बात करूंगा इस वक्त गाने की। मैं खिलाड़ी गाना सुना आपने उदित नारायण की आवाज में, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में, लिरिक्स लिखा है माया गोविंद ने, कॉम्पोजिशन अनु मलिक ने, लेकिन इस गाने को रिक्रिएट किया तनिष्क बागची ने। और ठंड बहुत है भैया, बातें कम करूंगा, गाने सुनाऊंगा अगले 3 बैक टू बैक गाने सिर्फ आपके लिए।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर।

0: देखो, एक होता है सही समय, एक होता है गलत समय, और एक हो रहा है अभी का समय जो 9:15 से ऊपर है या नीचे मैं नहीं बताऊंगा, खुद से अपनी घड़ी चेक करो, चेक करो, चेक करो। इससे पहले आपने गाना सुना क्या लोगे तुम, बी प्राक की आवाज में। लिरिक्स लिखा था जानी ने और कॉम्पोजिशन भी जानी ने, लेकिन बी प्राक, बी प्राक, बी प्राक। जब फिल्म एनिमल का ट्रेलर आया था तो उसमें एक बहुत ही शानदार सीन था जहाँ पे रणबीर कपूर और अनिल कपूर वो एक्ट कर रहे होते, जहाँ रणबीर कपूर कहते कि मैं आपकी एक्टिंग करूंगा, आप पापा हो मेरे, और फिर वो डायलॉग आता है सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं। तो जब भी मैं बी प्राक के गाने सुनता हूँ मेरे को वो सीन याद आता है कि सुनाई दे रहा है। इसी बात पे चलो तीन गाने बैक टू बैक आपके।
1: गंगापुर सिटी की धरती।

0: जस्मीन नौटियाल असीस कौर की आवाज में आपने गाना सुना रहा था लंबिया। लिरिक्स और कॉम्पोजिशन तनिष्क बागची भैया ने लिखा है। वैसे हाँ, फिलहाल मेरा समय हो चुका है जाने का, टाइम टू गो। कल मिलेंगे सुबह 9 से 10 पर। आप कहीं मत जाओ, बने रहो हमारे साथ, गाने सुनो 89.6 रेडियो डीएसपी
1: गंगापुर सिटी की धड़कन।

0: 99.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आरजी खुशी। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हर सुबह मैं कहती हूँ कि अपने जीवन में अगर थोड़ा सा बदलाव अगर हम हर सुबह लेकर आए तो पूरा दिन कितना बेहतर जा सकता है, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल। और आज भी मैं एक ऑब्जर्वेशन से आपसे बात करने वाली हूँ। भगवत गीता में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण तब बोलना शुरू करते हैं जब अर्जुन उनसे एडवाइस मांगते हैं। यानी कि पहले जब अर्जुन इतने परेशान होते हैं तो श्री कृष्ण अपनी तरफ से बोलना शुरू नहीं करते। अगर हम सोचिए अपनी लाइफ में ये अप्लाई कर दें तो हमारी लाइफ कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी, है ना? सोच कर देखिए। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: देखो वैसे तो सर्दियों में ना किसी का एक्सरसाइज करने का मन करता नहीं है, लेकिन अगर सर्दियों में आपने एक प्राणायाम कर लिया ना तो आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं हूँ आरजे खुशी और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जिन लोगों को सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिनके पैर के नीचे के जो तलवे हैं वो एकदम ठंडे हो जाते हैं, और जिनको साइनस रहता है या नाक बंद हो जाती है, कफ बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें सर्दियों में एक प्राणायाम करना चाहिए जिसका नाम है सूर्य भेदी। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी बाई नाक को बंद करना है और दाई नाक से सांस लेनी है, बाई से छोड़नी है, बस आपको इतना ही करना है। है ना आसान? लेकिन आपको पता है ये इतनी इफेक्टिव होती है, आपकी पूरी बॉडी को गर्म कर देती है, और अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, उसको भी ठीक कर देती है। अपना कर देखें और डिफरेंस खुद फील करें। आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: गंगापुर सिटी की धड़कन।

कभी कभी ना सुबह की शुरुआत होती बड़ी चिड़चिड़ वाली है, लेकिन अगर हमने अपनी प्रतिक्रिया उसके प्रति बदल दी ना तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं हूँ आरजे खुशी। सोच कर देखिए कि अगर आप किसी चीज पे अपनी प्रतिक्रिया ही ना दें तो वो आपको इतना परेशान कर ही नहीं सकती। और सुबह को बेहतर बनाना है तो सुबह की चिक चिक जो होती है ना उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। और अगर घर का हर सदस्य इस चिक चिक से बचने की कोशिश करे और अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करे तो पूरा घर एकदम आराम से शांति से हैप्पीली रह पाएगा, है कि नहीं? तो हम कोशिश कर सकते हैं कि जब भी हमें गुस्सा आए या जब भी हमें चिड़चिड़ होने की कोशिश करे, स्पेशली एकदम सुबह सुबह, तो हम कोशिश करें कि वहां हम अपनी कोई प्रतिक्रिया ना दें। और आप देखेंगे कि वो बात एकदम छूमंतर हो जाएगी, मतलब कि उस बात का कोई असर आप पर पड़ेगा ही नहीं। अब मुलाकात होगी कल। अभी के लिए यहाँ से निकलती हूँ, मैं हूँ आरजे खुशी। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। अक्सर हम बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सेम नहीं होती, वैसे ही हर दिन हमारा सेम नहीं हो सकता। तो परेशानी को छोड़ के उम्मीद पे जिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है।
1: गंगापुर स्थिति की धरती।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। सुप्रभात
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। सुप्रभात 89.6 पे रेडियो डीएस।

रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान खाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। सुप्रभात 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: कह दूं तुम्हें
1: हाँ
0: या चुप रहूं
1: ना
0: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में मैं आपको हिट फिल्म्स की दिलचस्प बातें बताऊंगी। अगर आप बॉलीवुड फैन भी हैं, तो भी आपने इन बातों पे कभी गौर नहीं किया होगा। चलिए लौट के आऊंगी और बताऊंगी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा।
1: गंगापुर सिटी की धरती।
2: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।